जनकपुर में सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिवजी के धमेरी और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर इनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं। सारथियों ने ध्वज पताकाओं तथा रत्नाभूषणों से रथ सजाए हैं। अगणित श्यामवर्णी घोड़े ऐसे हैं जो जल पर भी स्थल जैसी द्रुत गति से दौड़ते हैं, ऐसे वेग से कि उनकी टापें पानी में नहीं डूबती। रथों पर चढ़ी बारात नगर के बाहर आ जुटी है। घंटों से सुसज्जित मतवाले हाथी इस प्रकार झूमते चले जैसे सावन की श्यामवर्णी बादलों के झुंड गरजते हुए चलते हैं।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। पश्चिम एशियायाः संघर्षः दशकस्य बृहत्तमेषु संकटेषु अन्यतमः इति वर्णयन् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय संसाधनेषु भारः न्यूनीकर्तुं नागरिकाणाम् आह्वानम् अकरोत्। प्रधानमंत्री ह्यः गुजरातस्य वडोदरा नगरे सरदार धाम छात्रावासस्य उद्घाटनानन्तरं जनसभां संबोधयन् आसीत्।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् केन्द्र प्रशासनस्य निरन्तर प्रयासैः भारतं पश्चिमैशिया संघर्षेण उत्पन्नस्य ऊर्जा संकटस्य प्रभावी रीत्या प्रबन्धनं करोति। प्रधानमंत्री अवदत् यत् देशस्य जनेभ्यः अस्याः स्थितेः न्यूनतमः प्रभावः भवेत् इति सुनिश्चेतुं प्रशासनं निरन्तरं प्रयतमानः अस्ति इति। असौ एतदपि कथितवान् यत् आगामी एकवर्षं यावत् तैलेन्धनानां संयमित उपयोगः करणीयः, तेन अनपेक्षित विदेशयात्राभ्यः दूरीकरणं, स्वर्णक्रयणे नियन्त्रणं तथा स्थानीय वस्तूनां प्राधान्यं स्वीकर्तुं विशेषः आग्रहः कृतः, येन देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा स्यात्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवासरात आरभ्य संयुक्तारबामीरात नीदरलैंड स्वीडन नॉर्वे इटली इत्येतेषां देशानां षड्दिवसीय यात्रायां प्रस्थास्यति।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकट में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। वडोदरा में कल सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पांच देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यह असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन

0: मन भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कृषि बदलाव से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस पहल से लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
1: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया है। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी गिरफ्तार पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया है। 211 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। माधव तिवारी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduce consumption of petrol and diesel, stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis. Prime Minister said there is a need for all of us to come together and fulfill our responsibility to reduce the burden on the country's resources.
3: सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो, लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें।
2: Prime Minister Narendra Modi will be on a six-day visit to United Arab Emirates, UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy from Friday. On the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will reach UAE on Friday, where he will meet the President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Senior BJP leader Himanta Biswa Sharma will be sworn in as the Chief Minister of Assam in Guwahati today. Assam Governor Lakshman Prasad Acharya will administer him the oath of office and secrecy at a ceremony to be held at the Veterinary College playground in Khanapara area of the city. Four ministers, including two from the BJP and one each from the AGP and BPF, will also take oath along with the Chief Minister. They are Rameshwar Teli, Atul Bora, Charan Boro and Ajanta Niyog. In a social media post, Mr. Sharma said that former Minister Ranjit Kumar Das will be the NDA's candidate for the Assam Assembly Speaker's position. This will be the second consecutive term for Mr. Sharma as Chief Minister and third term for an NDA government in Assam. The swearing-in ceremony will be attended by Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and BJP President Nitin Naveen, among others. The NDA, comprising the BJP, Ahom Gana Parishad, AGP, and the Bodoland People's Front, BPF, secured a sweeping mandate in the assembly polls, winning 102 seats in the 126-member house. The BJP bagged 82 seats, while AGP and BPF won 10 seats each. Enforcement Directorate, ED, has arrested former Fire and Emergency Services Minister of the Government of West Bengal, Sujit Basu, in Kolkata in connection with the South Domdom Municipality recruitment scam. Officials at the ED said that the Bose allegedly recommended around 150 candidates for various posts under the South Domdom municipality in exchange for pecuniary benefits during the former TMC regime. The officials noted that ED has traced direct proceeds of crime in the form of flats allegedly acquired by him in lieu of providing municipal jobs to various individuals. The probe agency have also identified substantial cash deposits in bank accounts under his control. Mr. Bose will be produced before the special court today. U.S. President Donald Trump has said the ceasefire with Iran was at its weakest and on a massive life support a day after he rejected Tehran's proposal to end the months-long war as totally unacceptable. In response to a question on the ceasefire with Iran in the wake of the rejection of the peace proposal, Trump told reporters at the Oval Office that it is at its weakest. After reading that piece of garbage they sent, it's on life support, massive life support, he added. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim today. According to IMD, thunderstorms and hailstorms are likely to prevail over Himachal Pradesh, Ladakh and Jammu and Kashmir for the day. The Met Department has predicted thunder squall with wind speed reaching up to 60 km per hour over Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, Bihar and Uttarakhand today. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Punjab Kings by 3 wickets in Dharmashala last night. Chasing a target of 211 runs set by Punjab Kings, Delhi Capitals scored 216 for 7 in 19 overs. And that is the end of this news bulletin.
4: আকাশবাণী কলকাতা অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে। একটু পরেই যুববাণীর অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় দেবজিৎ অধিকারী।

0: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97,00,000 मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
4: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
3: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
7: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
8: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
1: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
9: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
1: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट, निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमरीका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमरीका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
10: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य देश पर 2800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जाँच के लिए 3 सदस्यों की जाँच समिति गठित की गयी है। एक रिपोर्ट।
11: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवलसन परमार, आकाशवाणी समाचार।

0: ढाका।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सर फिरोजी।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, पीएम नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products in a bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. 4 ministers, 2 from BJP and 1 each from AGP and BPF to also take oath. ADRS former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Damdam Municipality recruitment scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden and Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduced consumption of petrol and diesel, stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis. Prime Minister said there is a need for all of us to come together and fulfill our responsibility to reduce the burden on the country's resources.
4: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च हो, जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं। और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है।
3: Prime Minister said that India spends lakhs of crores of rupees in foreign exchange to import many products from abroad, and the crisis has led to steep rise in imported goods and severely disrupted global supply chains. Mr. Modi said that his government is working to ensure the impact of the crisis on India.

ये है आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल। मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर। ये कार्यक्रम आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 9:11 और ये समय होता है आपके उस पसंदीदा कार्यक्रम का जिसका नाम है रसधारा। और इस सफर में आपके साथ है आपकी रेडियो दोस्त सुलक्षणा पर्वत, जो तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है रसधारा। और भाव प्रधान बातों और गीतों का ये कार्यक्रम है, तो आज आगाज करना चाहूंगी इस कार्यक्रम को उस गीत के साथ जिसके बोल हैं, एक दिन बिक जाएंगे माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। सुषमा श्रेष्ठा मुकेश की आवाज में फिल्म धर्म करम से इस गीत को सुनिए।

वो है सेवा और जीवन रक्षा की नायिकाएं। सेवा और जीवन रक्षा की नायिकाएं उन साहसी, त्यागी और निस्वार्थ महिलाओं को संदर्भित करता है जिन्होंने न केवल दूसरे के जीवन की रक्षा की बल्कि निस्वार्थ सेवा के माध्यम से समाज में आशा की किरण जगाई।

हाँ, जैसा कि मैंने बताया आपसे कि सेवा और जीवन रक्षा की जो नायिकाएं हैं वही आज हमारे रसधारा का विषय है। हिंदी साहित्य और भारतीय संस्कृति में ऐसी नायिकाओं का विशेष स्थान है। अगर पौराणिक और ऐतिहासिक नायिकाओं की बात करूं तो सीता, सती, शकुंतला, पांचाली और यशोधरा को भारतीय संस्कृति में उनकी सेवा, त्याग और जीवन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। निस्वार्थ सेवा का महत्व क्या है, ये भी मैं आपसे साझा करूंगी। लेकिन

फिलहाल रुक करते हैं अगले गीत की ओर। अगला गीत जिसे आप तक मैं पहुंचाऊंगी, उसे हमने कौन सी फिल्म से लिया है पहले वो तो बता दूं आपको। ऐसा है दोस्तों कि उस फिल्म का नाम है आखिर क्यों, और आखिर क्यों फिल्म से कौन सा गाना आपके लिए प्ले करूंगी वो गीत आप सुनेंगे आशा भोसले और साथियों की आवाज में। कोमल है कमजोर नहीं।

निस्वार्थ सेवा का महत्व भारतीय दर्शन में सात्विक निष्काम सेवा को मोक्ष का साधन माना गया है, जिसमें दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना ही जीवन रक्षा और सेवा का मुख्य उद्देश्य है। आधुनिक नायिकाओं की बात करूं तो समाज के प्रति समर्पित नर्सें, महिला डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता और आपातकालीन सेवा कर्मी जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए दूसरों की रक्षा करती हैं। साहित्य चित्रण की बात करूं इस विषय से संबंधित तो हिंदी साहित्य में ऐसी नायिकाओं का चित्रण किया गया है जो मुश्किल परिस्थितियों में भी जीवन की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालती हैं।

आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक, एक समाज सुधारक, और उन्हें लेडी विद द लैंप, दीपक वाली महिला के नाम से भी जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की कहानी अगर मैं संक्षेप में कहूं तो उनका जन्म और पृष्ठभूमि के बारे में, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई यानी आज ही के दिन 1820 को इटली के फ्लोरेंस शहर में एक संपन्न ब्रिटिश परिवार में हुआ था। नर्सिंग का संकल्प। उस समय नर्सिंग को एक प्रतिष्ठित पेशा नहीं माना जाता था, लेकिन फ्लोरेंस ने समाज के विरोध और परिवार की इच्छा के विरुद्ध जाकर मरीजों की सेवा करने का मर्म चुना। जी हां, तो सोच सकते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अंदर जो लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी थी, दूसरों के लिए सेवा करने की जो बात थी, वो कितनी ज्यादा कूट कूट के भरी हुई थी।

परिवार के इच्छा के विरुद्ध जाकर मरीजों की सेवा करने का मार्ग चुना था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्रीमिया युद्ध और लेडी विद द लैम्प के बारे में बताऊंगी संक्षेप में। 1854 में क्रीमिया युद्ध के दौरान वे यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल 38 नर्सों की टीम के साथ तुर्की के स्कुटारी में ब्रिटिश सैन्य अस्पताल में घायल सैनिकों की सेवा के लिए पहुंची। वहां उन्होंने गंदगी और खराब हालातों में भी दिन रात मरीजों की सेवा की। रात में वे हाथ में लैंप लेकर सैनिकों की देखभाल करती थीं, जिससे उन्हें लेडी विद द लैंप कहा जाने लगा। क्रांतिकारी बदलाव लाया उन्होंने। उन्होंने अस्पताल में स्वच्छता के मानक जैसे साफ चादरें, ताजी हवा, साफ सफाई स्थापित किए, जिससे मृत्यु दर में भारी गिरावट आई। अंतिम समय और विरासत की बात करूं उनकी तो 1860 में उन्होंने लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की। उनका निधन 13 अगस्त 1910 को हुआ। उनका त्याग और सेवा की भावना, सुविधाओं का त्याग की बात करूं अगर तो एक अमीर परिवार से होने के बावजूद उन्होंने अपने आरामदेह जीवन का त्याग कर युद्ध के मैदान में गंदे और चुनौतीपूर्ण माहौल में काम करना चुना।

बात कर रही हूँ फ्लोरेंस नाइटिंगल लेडी विद द लैम्प की। आज 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है और जब हम सेवा और सेवा की बात कर रहे हैं नायिकाओं से जुड़ी, तो भला ऐसे में इंटरनेशनल नर्सेस डे के दिन फ्लोरेंस नाइटिंगल का जिक्र कैसे ना हो। फ्लोरेंस नाइटिंगल, उन्होंने स्वयं के सेहत की परवाह ना करते हुए घायलों की सेवा में अपनी जान जोखिम में डाली। और आपको बता दूं, उन्होंने केवल सेवा ही नहीं बल्कि डेटा, चार्ट्स और ग्राफ का उपयोग करके ये साबित किया कि स्वच्छता से मौतों को कम की जा सकती है, क्योंकि डेथ रेट जो है वो कम हो जाएगा। मानवता की मिसाल रही उन्होंने, घायलों के घावों को साफ करने, पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने और उन्हें सांत्वना देने के लिए खुद को समर्पित कर दिया, जिससे उन्हें दूत एंजल माना जाने लगा। उनकी इसी अतुलनीय सेवा के सम्मान में उनके जन्मदिन 12 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है।

0: ये बात तो है कि समय रहते अगर हम अपने जीवन के कुछ समय को सेवा के नाम कर दें, मानवता की सेवा करें, तो उसका जो फल होता है ना, वो जीते जी नहीं बल्कि जीने के बाद भी आपको मिलता है। और असली जीवन उसी का सार्थक होता है। खुद के लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन औरों के लिए जो जीते हैं वही अपने जिंदगी को सार्थक बनाते हैं।
1: मैंने

और थोड़ी ही देर में कार्यक्रम रसधारा को आज के लिए विराम देना पड़ेगा। और चलते चलते बस यही कहेगी सुलक्षणा कि ये जीवन बड़ा अनमोल है, और इससे भी अनमोल वो लम्हे और क्षण होते हैं जब हम खुद के लिए नहीं बल्कि निस्वार्थ भाव से दूसरों की लिए हम सेवा करते हैं या सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, और दूसरों के सेवा में कुछ ऐसा कर गुजरते हैं कि फिर हमें बहुत सुकून मिले। तो हम दुनिया के लिए नहीं लेकिन खुद के लिए, अपने सुकून के लिए क्यों ना सेवा भाव से आगे बढ़े। जरूरी नहीं कि ये सेवा मानव टू मानव ही हो, इंसान इंसान का ही सेवा करे। आप पंछियों की सेवा कर सकते हैं, गर्मी का मौसम है, उनके लिए थोड़े से छोटे से पात्र में पानी रख दें, कुछ दाना रख दें अपने बालकनी में, छत में। जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके लिए रास्ते में थोड़ा बहुत खाने का जो है प्रबंधन कर दें, या फिर उनसे क्रुएलिटी मतलब बहुत ही क्रूर होके पेश ना आए। और रही बात कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, बस ये फलसफा जो है आपके अंदर सेवा की भाव को जो है फलते फूलते हुए जरूर देखना चाहेगी आपकी जो रूह है वो। और अब इसी के साथ सुलक्षणा कहेगी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और चारों तरफ खुशियों के फूल बिखेरते रहिए। किशोर कुमार और साथियों की आवाज में फिल्म मिस्टर इंडिया से ये गीत आप सभी के लिए छोड़े जा रही हूँ, जिसे कलमबद्ध किया है जावेद अख्तर ने, संगीत से सजाया लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। और 10:02 पर आप मुझे सुन सकते हैं, हाँ, आकाशवाणी कोलकाता के संचयिता चैनल पर नहीं लेकिन दिल से दिल तक वाले चैनल पर, यानी कि 107 FM रेनबो पर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुलक्षणा चलते चलते यही कहेगी आपका दिन मंगलमय हो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्वा सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी सरकार होगी। श्री सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमुड़ी को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा है। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडापड़ी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। जम्मू कश्मीर में व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल पीके मिश्रा ने पुंछ जिले के सुरनकोट सेक्टर के परिचालन क्षेत्रों का दौरा किया और आतंकवाद रोधी अभियानों की समीक्षा की। इस दौरान कोर कमांडर को वरिष्ठ अधिकारियों ने आतंकरोधी ग्रिड, खुफिया नेटवर्क और अंतर एजेंसी समन्वय तंत्र के बारे में भी जानकारी दी। अमरीका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमरीका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी। आईपीएल क्रिकेट में कल रात धर्मशाला में दिल्ली कैपिटल्स

297.1 1008 kHz पर। यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल संचेता, जिस पर आप सुन रहे हैं रोजाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। अंजुमन के सफर में आज आपके साथ है आपकी मेजबान सूफिया शेरी। आप सबों को सूफिया का पुरखलूस आदाब। मौसे सामीन, स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ 10:16:50, यानी ये इशारा है प्रोग्राम की पहली पेशकश आईना का। इंटरनेशनल डे फॉर प्लांट हेल्थ, आलमी यौम सेहत नबातात। हर साल 12 मई को दुनिया भर में आलमी यौम सेहत नबातात मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद पौधों, फसलों और दरख्तों की अहमियत को उजागर करना और उनकी बीमारियों से हिफाजत के बारे में लोगों में शऊर पैदा करना है। पौधे न सिर्फ इंसानों और जानवरों की गजा का जरिया हैं, बल्कि जमीन के माहौलियाती तवाजुन को बरकरार रखने में भी बुनियादी किरदार अदा करते हैं। पौधों की सेहत इंसानी जिंदगी, माशियत और माहौल के लिए बेहद जरूरी है। अगर फसलें बीमारियों, कीड़ों या मौसमी तब्दीलियों का शिकार हो जाएं तो गजाई किल्लत पैदा हो सकती है। इसीलिए दुनिया भर के साइंसदान, किसान और माहिरीन ज़राअत पौधों को महफूज रखने के लिए मुसलसल कोशिशें करते रहते हैं। आजकल बढ़ती हुई आलूदगी, जंगलात की कटाई, मौसमियाती तब्दीली और कीड़े मकौड़ों के हमले पौधों के लिए खतरा बन चुके हैं। बाज़ औक़ात एक मामूली बीमारी पूरी फसल को तबाह कर देती है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए पौधों की बरवक्त देखभाल, मियारी बीजों का इस्तेमाल, मुनासिब आबपाशिर माहौल, दोस्त खादों का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। आलमी यौम सेहत नबातात हमें यह पैगाम देता है कि सेहतमंद पौधे ही सेहतमंद जिंदगी की जमानत है। अगर हम पौधों की हिफाजत करेंगे तो जमीन सरसब्ज रहेगी, माहौल साफ होगा और आने वाली नस्लें बेहतर जिंदगी गुजार सकेंगी। पौधे कुदरत का कीमती तोहफा है, इनकी हिफाजत दरअसल इंसान की हिफाजत है। हमें चाहिए कि हम इस दिन के मौके पर अहद करें कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं, पौधों की देखभाल करें और माहौल को सरसब्ज और शादाब बनाने में अपना भी किरदार अदा करें।

आइए अब सुनते हैं उदित नारायण की आवाज में फिल्म सिर्फ तुम से का ये नगमा। शायरी है समीर के, जिसे मौसीकी से आरास्ता किया है नदीम श्रवण ने।

आप सुन रहे थे कैफ भोपाली की शायरी को खयाम की मौसिकी के साथ लता मंगेशकर की मसूर गुन आवाज़ में, फिल्म शंकर हुसैन से।

भाई बातें हो गई, कुदरत के पौधों की बातें हो गई, शायरी की और जज्बात की, तो अब बातें हो जाएं थोड़ी रोज़गार की भी। क्योंकि भाई जब तक रोज़गार नहीं, पॉकेट में खनकते सिक्के नहीं, पेट में रोटी नहीं, तब तक ना शायरी का हुस्न है ना ही कुदरत के नज़ारे आपको महसूस कर पाते हैं। तो एक भूखे इंसान से पूछिए ना तो उसे चांद में भी रोटी नज़र आती है। तो चलिए हम बात करते हैं रोज़गार के मौके में कि किस तरह से आपको मुख्तलिफ शुबों में रोज़गार के नए मौके मिल सकते हैं और किस तरह हमारी नौजवान नस्ल जो है बेरोज़गारी के मसले से नम्रदास्मा हो सकती है। रोज़गार की अहमियत, ज़रूरत और दुनिया में रोज़गार के मौके जो है ना वो बहुत अहम हमारे बहुत अहम मौसू है इसमें, और इंसानी ज़िंदगी में रोज़गार को बुनियादी अहमियत हासिल है। रोज़गार न सिर्फ इंसान की माशी ज़रूरियात पूरी करता है बल्कि इसे इज़्ज़त नफ्स, खुद एतमादी और माशरे में एक बावक़ार मकाम भी अता करता है। हर फर्द अपनी सलाहियत, मेहनत और तजर्बे के मुताबिक किसी न किसी पेशे से वाबस्ता होकर अपनी और अपने ख़ानदान की ज़रूरियात पूरी करता है। मौजूदा दौर में तालीम याफ्ता और हुनरमंद अफराद के लिए दुनिया भर में बेशुमार रोज़गार के मौके पैदा हो रहे हैं, ख़ास तौर पर फनी और हुनरमंद शोबों में। रोज़गार इंसान की ज़िंदगी का अहम सतून है। अगर इंसान के पास रोज़गार ना हो तो वह माशी मुश्किलात, ज़हनी दबाव, एहसास महरूमी का शिकार हो जाता है। रोज़गार इंसान को खुद कफील बनाता है और इसकी शख्सियत में एतमाद पैदा करता है। एक बाइज्जत रोज़गार इंसान को माशरे में इज्जत और पहचान दिलाता है। मुल्क की तरक्की भी रोज़गार से वाबस्ता होती है। जब ज़्यादा लोग बरसरे रोज़गार होते हैं ना तो गुरबत कम होती है, माशियत मजबूत होती है और समाजी इस्तेहकाम पैदा होता है। इसलिए हुकूमतें नए रोज़गार के मौके पैदा करने पर तवज्जो देती रहती है। आज के दौर में महंगाई और बढ़ती हुई ज़रूरियात ने रोज़गार की अहमियत को मज़ीद बढ़ा दिया है। खुराक, तालीम, इलाज, रिहाइश और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए आमदनी ज़रूर बहुत ही ज़रूरी है। रोज़गार न सिर्फ माली आसूदगी फराहम करता है बल्कि इंसान को मसरूफ़ और मस्बत सोच का हामिल भी बना

आप सुन रहे थे शान और श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म सिर्फ तुम का नगमा। शायरी थी महबूब विपुल और सानी की और जिसे मौसीकी से सजाया था सुहेल से शिवानी कश्यप वगैरह ने। सामीन कराम, वक्त तेजी से आगे की जानिए बढ़ रहा है। अब वक्त आ चुका है कि आपसे विदा लेने का वक्त बस 4-5 मिनट ही बाकी है हमारा और आपका साथ, लेकिन ये साथ कैसा गुजरा इसे आप हमें ज़रूर बताएं। और चलिए चलते चलते आपकी समातों की नज़र ये नगमा, फिल्म दिल से का, आवाज़ उदित नारायण और सुजाता की, शायरी गुलजार की जिसे मौसीकी से सजाया है ए आर रहमान ने।

आप सुनते रहे उदित नारायण की आवाज में फिल्म दिल से का नगमा, शायरी गुलजार की जिसे मौसफी से सजाया है ए आर रहमान ने। फिलहाल अपनी मेजबान सूफिया शेरी को इजाजत दें, लेकिन मैं आपको तन्हा नहीं छोड़े जा रही हूँ। मैं हवाले कर रही हूँ आपके संजुक्ता नंदी के। अब इसके बाद आप आपकी तफरी का ख्याल रखेंगी।

ये है आकाशवाणी संचयिता का आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलो हर्ट्स। ये कार्यक्रम आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। दिन के 12 बजे हैं और ये समय होता है आपके उस कार्यक्रम के नाम जिसका नाम है सुरभि। और सुरभि में जैसा कि आप जानते हैं दो खंड होता है, चर्चा है और पहल। और आज चर्चा है का विषय है इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। तो ऐसा है दोस्तों कि सबसे पहले तो आपकी रेडियो दोस्त लक्षणा पर्वत आप सभी का स्वागत करती है कार्यक्रम सुरभि में। दैनिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम है और इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ की बात करूं तो हर साल 12 मई को मनाया जाता है और 2026 में अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 12 मई यानी आज मनाया जा रहा है। और इसके पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि इस दिवस का मुख्य उद्देश्य पौधों के स्वास्थ्य के महत्व के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना। महत्व की बात करूं तो ये भुखमरी को समाप्त करने, गरीबी को कम करने, जैव विविधता और पर्यावरण की रक्षा करने तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में पौधों की भूमिका को उजागर करता है। पौधों की सुरक्षा की बात करूं तो दुनिया भर में हर साल कीड़े और बीमारियों के कारण लगभग 40% खाद फसलें नष्ट हो जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र का जो पहल है ये संयुक्त राष्ट्र यूएन ने इस दिन को आधिकारिक रूप से नामित किया है जो 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष की विरासत को आगे बढ़ाता है। और मुख्य संदेश ये है कि पौधों का स्वास्थ्य सीधे तौर पर मानव स्वास्थ्य से जुड़ा है। ये दिवस हमें फसलों को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए सामूहिक प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है।

एक आवश्यक सूचना। 136वीं डाक अदालत, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, पश्चिम बंगाल सर्कल की अध्यक्षता में दिनांक 17/6/2026 को दोपहर 11:30 पर मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल, योगायोग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 7/12 में गूगल मीट वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 136वीं डाक अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के डाक सेवाओं से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संपूर्ण ब्यौरा जैसे कि संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री SC दास, सहायक निर्देशक डाक सेवा, ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल P36 CR एवेन्यू कोलकाता 7/12 के नाम भेजी जाए और ये डाक या ईमेल आईडी कृपया नोट करें cpmg_wb@indiapost.gov.in या adpgcowb@gmail.com। मैं फिर से दोहराती हूँ, ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in या फिर adpgcowb@gmail.com या pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 1/6/2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट वीडियो सम्मेलन के जरिए डाक अदालत में उपस्थित हो। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निर्देशक डाक सेवा, ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या 0332212050, दूसरा दूरभाष संख्या है 0332212062 या 0332212050 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत के आवेदन पर डाक अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकारी

आदि से संबंधित विधेयक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई।

और अब कार्यक्रम सुरभि को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए आपको बता दूं कि पहल का आज का जो विषय है वो है प्राचीन स्मारक और पुरातत्व तत्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958। भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है जो राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्थलों और अवशेषों के संरक्षण, पुरातत्व उत्खनन के नियम और मूर्तियों व नकाशी के संरक्षण का प्रावधान करता है। इसे इंडिया कोड पर विस्तार से देखा जा सकता है। ये 15 अक्टूबर 1959 से लागू हुआ अधिनियम के प्रमुख प्रावधान AMASR एक्ट 1958 प्राचीन स्मारक कम से कम 100 वर्षों से अस्तित्व में कोई भी संरचना, गुफा, शैल मूर्तिकला या शिलालेख जो ऐतिहासिक या कलात्मक महत्व का हो। ये अधिनियम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को स्मारकों की रक्षा और रख रखाव की शक्ति देता है। संरचित स्मारकों के चारों ओर 100 मीटर का दायरा निषेध क्षेत्र प्रोहिबिटेड एरिया है, जहां निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित है, और अगला 200 मीटर विनियमित क्षेत्र रेगुलेटेड एरिया है। संशोधन 2010 के संशोधन ने निषिद्ध क्षेत्रों में निर्माण कार्यों को विनियमित किया है। और यहां बात बता दूं कि संरक्षित क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण के लिए भारी जुर्माना और जेल का प्रावधान है। तो अब आपके लिए पहल के बाद एक गीत।

ऐसा है दोस्तों कि कार्यक्रम सुरभि एक नन्हा सा कार्यक्रम होता है, मिनी प्रोग्राम, और 20 मिनट का ये कार्यक्रम है। अब समय जो शेष बचा है वो करीब 4 मिनट से भी कम है, तो मैंने सोचा आप कार्यक्रम को विराम दूं और चलते चलते आप सभी के लिए फिल्म रामलीला से श्रेया घोषाल और उस्मीन मीर की आवाज में एक खूबसूरत सा गीत, मस्ती भरा गीत। सिद्धार्थ गरिमा ने इसे कलमबद्ध किया है और संगीत का जादू है संजय लीला बंजाली का। और इस गीत को सुनते सुनते आगे दीजिए अपनी आज फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत को। इसी के साथ कहूंगी आपका दिन मंगलमय हो।

के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा

0: স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
1: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी गई है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज सुबह विशेष अदालत में पेश किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ, सहायक नर्स मिडवाइफ और महिला स्वास्थ्य आगंतुकों को प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, 1,00,000 रूपये नकद और पदक शामिल है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1041 अंक लुढ़ककर 74,975 पर, जबकि निफ्टी 297 अंक की गिरावट के साथ 23,519 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Valsa Williams. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma today took oath as the Chief Minister of Assam for a second consecutive term. Governor Lakshman Prasad Acharya administered the oath of office in secrecy to Dr. Sarma at a ceremony held at the Veterinary College ground in Khanapara, Guwahati.
0: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
2: Along with Dr. Sarma, four MLAs were also sworn in as cabinet ministers. They include Rameshwar Teli and Ajanta Niyog from the BJP, Atul Bora from Ahom Gana Parishad, and Charan Boro from Bodoland People's Front. Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several union ministers and chief ministers of NDA ruled states attended the ceremony. With this, Dr. Sarma has become the first non-Congress leader in Assam to serve consecutive terms as Chief Minister. The National Democratic Alliance NDA returned to power for a third consecutive term in the state, securing 102 seats in the 126-member Assam Legislative Assembly. The Bharatiya Janata Party emerged

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओ, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
0: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
0: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा पुष्कर लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
0: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़, फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
2: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए, और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
0: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
2: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
0: जी,
2: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं।
0: जी विमलेश जी, तो श्रोताओं सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
2: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
0: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता है
2: जी,
0: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
2: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मति भ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
0: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है, या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
2: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है।
0: तो इसे

0: जरा विस्तार से बताइए।
1: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
0: जी।
1: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी लैग कहते हैं।
0: क्या कहते हैं?
1: थर्मल लैग।
0: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है
1: जी।
0: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भभका कह सकते हैं?
1: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
0: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
0: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
1: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें, और हाँ, प्यास लगे या न लगे थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिए। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं
0: जी।
1: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
0: जी हाँ श्रोताओ, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहनें।
1: जी,
0: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो।
1: जी,
0: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
1: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है, और धूप का चश्मा जरूर पहने क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है।
0: जी, तो श्रोताओ ये थी हमारी आज की जानकारी जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
1: और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, आग बरसाती धूप।
1: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है, और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
2: आग बरसाती धूप।
3: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
4: क्यों?
3: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
4: अच्छा, तुमने खुद देखे हैं?
3: हाँ।
4: अच्छा, तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
3: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
4: हाँ हाँ, धीरे से धीरे से चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ
0: आ चलो खाते हैं। अरे यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चले।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे

0: आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे इन दोनों बच्चों को देखो, कहाँ भागे जा रहे।
1: मोहन और तेज दौड़ो, देखो मुझे छू सकते हो।
2: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे तो गिर पड़ा। अरे मोहन तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन मोहन,
0: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा, भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलूं देखूं। अब

0: क्या बात है?
1: डॉक्टर साहब, लगता है इसे लू लग गई है।
0: ओहो, अच्छा, इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई, और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए, इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
1: अच्छा डॉक्टर साहब।
0: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
2: जी।
0: लाओ, अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से 1 फुट ऊपर उठाकर रखो।
1: हाँ जी,
0: ऐसे। लाओ, अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ, बुखार कम हो गया। भाई, अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
1: जी।
0: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है
1: जी।
0: भाई, अब घबराने की जरूरत नहीं है।
2: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
0: बेटा, बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
2: जी,
0: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
2: इससे क्या होता है?
0: भाई, तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
1: डॉक्टर साहब, कैसे बच सकते हैं इससे?
0: भाई, सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
0: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए
1: जी।
2: और अगर लू लग जाए तो
1: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
0: भाई, लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए
2: जी।
0: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
2: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
0: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
1: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
2: जी।
1: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
2: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
0: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस, आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
1: गर्म हवा से रहे हम दूर,
3: ठंडक में खेले भरपूर।
1: ठंडक
3: में खेले भरपूर।
0: आग बरसाती धूप।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
5: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक्का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
4: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला
6: इन्हें हमारा सलाम।
4: तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का।

0: नमस्कार साथियों।
1: साथियों नमस्कार।
0: साथियों, भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
1: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
0: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक एल्बर्ट एक्का।
1: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि एल्बर्ट एक्का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
0: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक एल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
1: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा
0: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: उनके शौर्य को देखकर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
0: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं एल्बर्ट एक्का की कहानी।
1: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़, तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहाँ के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था, और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ, तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ

0: वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन, भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
1: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
0: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
1: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा, पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
0: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक एल्बर्ट एक्का के पास।
1: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
0: और तो और, वहाँ पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
1: लेकिन लांस नायक एल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगीं।
0: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गने बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
1: लांस नायक एल्बर्ट एक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
0: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
1: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक्का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
0: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
1: फिर क्या था, लांस नायक एल्बर्ट एक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
0: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। एल्बर्ट एक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक एल्बर्ट एक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
1: लेकिन इस युद्ध में एल्बर्ट एक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
0: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
1: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम

और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम। परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
1: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिल्यांग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
0: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग।

0: ते हुए लिया गया है।
1: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व सरमा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉ. सरमा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मैं श्री हिमंत बिस्व सरमा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास आरु अनुगत्य पोषण करिम।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉ. हिमंता बिस्व सरमा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री सरमा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्य टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के.ए. सेंगोतयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार

0: कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ्स, सहायक नर्स मिडवाइफ्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मित्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबू धाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़क कर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। IPL क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, CBI जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। CBI ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और IPL क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: আকাশবাণী কলকাতা সঞ্চয়িতা। এখন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে শুনবেন শরৎ, শিল্পী প্রসেনজিৎ সেনগুপ্ত। শিল্পীকে তবলায় সহযোগিতা করেছেন সমীর নন্দী। শুনবেন বৃন্দাবনী সারং রাগে শরৎ।

0: আকাশবাণী কলকাতা, শুরু হল সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গের দ্বিতীয় অধিবেশন। অনুষ্ঠান শুনছেন 297.6 মিটারে, অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজে। এখন শুনবেন রবীন্দ্রসঙ্গীত, শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसको कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। एजेंसी ने कहा कि यह फैसला केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्क्रियों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवारों की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
3: आईसीएसईआर समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये आईसीएसईआर के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
1: संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेमा सानी ने इंडिया पोस्ट की अगली पीढ़ी के डिजिटल प्लेटफॉर्म एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी के दूसरे चरण की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बताया कि यह टेक्नोलॉजी किस प्रकार शाखा कार्यालयों को वास्तविक समय की जानकारी प्रदान कर रही है। डॉ. चंद्रशेखर पेमा सानी ने कहा कि एआई का एकीकरण इंडिया पोस्ट को बड़ी मात्रा में परिचालन डेटा संसाधित करने, परिणामों की भविष्यवाणी करने, नियमित कार्यों को स्वचालित करने और डाक नेटवर्क में सेवा वितरण को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने में मदद कर रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपए का

अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लगातार चौथा वर्ष है जब बैंक मुनाफे में रहे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति न्यायालय में अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करेगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा के रामेश्वर तेली, अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा सहित चारों मंत्रियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे और गुजरात तीसरे स्थान पर है। आज के मैच का विजेता तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 5:21। आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। दोस्तों, इस कार्यक्रम और चैनल को आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं।

दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी से इशारा कर रही है कि शुरू हो चुका है आप सभी का प्रिय कार्यक्रम उर्वशी, और उर्वशी को लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त और होस्ट देविका। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में उर्वशी में आज के सेगमेंट यानी कि मंगलवार के सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आते हैं एक ही फिल्म से गीत। जी हाँ, एक ही फिल्म से एक कुछ ऐसे गीत लेकर आते हैं जो गीत बहुत ही सुंदर तो होते हैं, खूबसूरत तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये फिल्म होती है वुमेन सेंट्रिक फिल्म। जी हाँ, तो आज कौन सी फिल्म है हमारे साथ ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल आप सभी के लिए प्रस्तुत है जिस फिल्म के विषय में आज बातें होंगी, उसी फिल्म का ये गीत आप सुनेंगे। इस गीत को सुखविंदर सिंह की आवाज़ में

जिंदगी क्या बात है, ये गीत अभी अभी आपने सुना सुखविंदर सिंह की आवाज में। और आपको बता दें कि ये गीत आपने सुना फिल्म अस्तित्व से। अस्तित्व एक ऐसी फिल्म है जिसमें कई भावनाओं का समावेश देखने को मिलता है, खास तौर पर एक महिला के मन की जो चाह है और कहीं ना कहीं उसकी तरक्की की राह में कहीं ना कहीं जो रुकावट आती है, कभी कभी समाज की पिछड़ी सोच की वजह से, ये सब कुछ हमें एक तरह से देखने को मिलता है इस फिल्म में। ये फिल्म डायरेक्टेड है महेश मांजरेकर द्वारा, जिसे लिखा है इम्तियाज हुसैन ने और महेश मांजरेकर ने मिलकर। दोस्तों आपको बताऊं कि ये जो फिल्म है, ये फिल्म आई थी साल 2000 में, 6 फरवरी साल 2000 को ये फिल्म रिलीज होती है, 2 भाषाओं में, मराठी और हिंदी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2.16 करोड़ यानी 2.25 करोड़ के करीब का बिजनेस किया था। और आपको बता दूं कि ये जो फिल्म थी, इस फिल्म में मुख्य किरदार किन लोगों ने निभाए थे। मुख्य किरदार में हमने अभिनय करते हुए देखा तब्बू, सचिन खेडकर, मोहेश भेल, रविंद्र मनकनानी, स्मिता जयकर, सुनील बर्वे और नम्रता शिरोडकर को। दोस्तों इस फिल्म के किरदारों से अगर आपका परिचय करवाऊं तो तब्बू इस फिल्म में अदिति पंडित के नाम से दिखी और साथ ही उनकी पति का किरदार निभाया सचिन खेडकर ने और उनके

के किरदार का कैरेक्टर का नाम था श्रीकांत पंडित। श्रीकांत पंडित के मित्र के रूप में रविंद्र मनकानी थे जो कि रवि के रूप में फिल्म में दिखाई दिए। इसके अलावा स्मिता जयकर मेघना के किरदार में नजर आईं। मोनिश भेल इस फिल्म में मल्हार कामत के नाम से नजर आए। वहीं सुनील बर्वे इस फिल्म में अंकित पंडित के किरदार में नजर आए थे। साथ ही रेवती के किरदार में नजर आई थी नम्रता शिरोडकर। दोस्तों इस फिल्म में कई बेहतरीन तराने भी हैं जिसमें सुखविंदर सिंह, साधना सरगम, शंकर महादेवन, हेमा सरदेसाई, कविता कृष्णमूर्ति जैसे एक तरह से आवाज की दुनिया के जाने माने नाम ने अपनी आवाज दी थी। तो दोस्तों आपको बताऊं कि इस फिल्म में जो मुख्य किरदार है वो तबू का है और तबू जो है वो अदिति पंडित के किरदार में नजर आती हैं। उनके पति हैं साथ में श्रीकांत पंडित। दोनों ही एक सुखी परिवार में इस परिवार का पालन कर रही हैं। उनके पुत्र का नाम होता है अनिकेत पंडित जिसकी अभी अभी सगाई हुई है रेवती से जो कि नम्रता शिरोडकर जिस किरदार को निभा रही हैं। साथ ही अगर बताएं कि ये जो पंडित परिवार है इस परिवार में जो आने वाली बहू है यानी रेवती ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी में जॉब करती है, नौकरी करती है। साथ ही श्रीकांत पंडित जो इस घर के बड़े हैं उनके मन में कहीं ना कहीं स्त्रियों के प्रति एक ऐसी भावना है, ऐसे विचार है, ऐसी सोच है जो सोच थोड़ी सी पिछड़ी हुई है और इसी वजह से वो अपनी होने वाली बहू यानी कि रेवती से कहते हैं कि वो अपनी नौकरी छोड़ दे क्योंकि उनका बेटा उनका ख्याल रख सकता है। इस फिल्म में कई कहानियां एक साथ चलती हैं जो एक ही परिवार से जाकर जुड़ती हैं। इस परिवार के फ्लैशबैक की अगर बात कही जाए तो तब्बू जो कि अदिति पंडित के रूप में नजर आती हैं और श्रीकांत पंडित ये दोनों पति पत्नी हैं लेकिन इन दोनों का जो किरदार है वो बहुत ही एक सुंदर किरदार के रूप में शुरू में नजर आता है लेकिन उनके बीच जो दरारें हैं वो कहीं ना कहीं आगे चलकर जब फ्लैशबैक में चीजें नजर आती हैं तो वो जो दरार है वो कहीं ना कहीं दिखाई देने लगते हैं। विश्वास, अविश्वास और समानता की इस कहानी को बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया और इस कहानी में कहीं ना कहीं महिलाओं की विचार, महिलाओं की जो इच्छाएं हैं, महिलाओं के जो अधिकार हैं उनको लेकर भी लिखा गया है। और इस फिल्म को जब फ्लैशबैक में ले जाया जाता है तो मोनिश भेल इस फिल्म में मल्हार कामत के रूप में नजर आते हैं जो कि अदिति पंडित यानी तब्बू को एक गुरु के रूप में मिलते हैं। एक संगीत सिखाने के लिए वो उनसे उनकी मुलाकात होती है और सीखने सिखाने के इस क्रम में कहीं ना कहीं उन दोनों के मन में भावनाओं का एक तरह से कह सकते हैं भावनाओं के मेल की वजह से उनके बीच एक खास एक नाजुक रिश्ता तैयार होता है और वही आगे चलकर कहीं ना कहीं तब्बू को भी एक तरह से परेशान करता है और कहीं ना कहीं उनके पति यानी श्रीकांत जो हैं वो इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाते। तो ये जो कहानी है वो कहीं ना कहीं एक महिला के अपने अस्तित्व के तलाश की कहानी है क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से जिस खूबसूरती से नम्रता शिरोडकर और तब्बू के किरदार के माध्यम से महिलाओं की भावनाओं को दर्शाया गया है, उनके विचारों को दर्शाया गया है, वो बहुत ही सराहनीय भी है।

0: sani da ni re ga ma da ni sa ni sa sa ni sa sa ni da pa ma da ma ni ni da pa ma ga re ga re sa ah ni re ga ma da ni sa ni re ga ma da ni sa
1: गाना मेरे बस की बात नहीं। अभी आप इस गीत को सुन रहे थे शंकर महादेवन और साधना सरगम की आवाज में। और दोस्तों आपको बता दें, आज अस्तित्व फिल्म के विषय में कुछ जानकारियां जो है आपके साथ साझा की मैंने। और फिलहाल समय हो चला है आज के कार्यक्रम के अंतिम गीत का। आपको बता दें कि सुखविंदर सिंह की आवाज में आप सुनेंगे इस गीत को, और इस गीत को सुनते सुनते हम अगले कार्यक्रम की ओर रुख करेंगे। तो फिलहाल आप सभी के लिए

0: You're tuned to the Sanchay the channel of Akash Vani Kolkata, broadcasting on 297.6 meters, corresponding to 1008 kilohertz medium wave. Time coming up to 1800 hours. In a short while from now, we shall join our studios in Delhi for the news.
1: Namaskar. Akashvani Samachar ke saath, main Lovely Nigam. भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में शामिल होंगे। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को पांच देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी, जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसको कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: भारत और नेपाल संबंध

पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि ये भारत और नेपाल की अटूट मित्रता तथा पारंपरिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा ताकि विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। नीट परीक्षा रद्द करने के संबंध में एक सम्मेलन में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी जो निष्पक्ष तरीके से होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस बीच सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रोड की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। सूत्रों के अनुसार मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे और गुजरात तीसरे नंबर पर है। आज के मैच का विजेता तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 6:10 और 55 सेकंड। आप सुन रही हैं 297.6 मीटर पर आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। दोस्तों 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। इस कार्यक्रम और चैनल को आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि आज वार्ता लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त और होस्ट देविका। दोस्तों आज वार्ता का जो विषय है वो समर्पित है उन फरिश्तों को जो दिन रात बिना थके हमारी सेवाओं में जुटे रहते हैं, जो दर्द में मुस्कान देना जानते हैं, जो अस्पतालों की धड़कन भी कहलाते हैं। मैं बात कर रही हूँ अंतर्राष्ट्रीय

नर्स दिवस की, क्योंकि आज के दिन 12 मई को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन आधुनिक नर्सिंग की जननी कही जाने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के अवसर पर भी मनाया जाता है। दोस्तों, जब भी कोई बीमार होता है और मरीज के रूप में अस्पताल में भर्ती होता है तो डॉक्टर उसके इलाज की दिशा तय कर देते हैं, लेकिन मरीज की देखभाल का सबसे बड़ा जिम्मा होता है नर्सों के कंधों पर। दवाई देना, मरीज की हालत पर नजर रखना, उनका हौसला बढ़ाना, परिवार को संभालना, ये सभी काम नर्सें बहुत ही धैर्य और समर्पण के साथ करती हैं। कोविड महामारी के समय पूरी दुनिया ने देखा कि नर्सें किस तरह से अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा में लगी रहती हैं। कई दिनों तक अपने परिवारों से दूर रहकर भी उन्होंने इंसानियत का सबसे खूबसूरत उदाहरण पेश किया।

करते हैं बहुत ही अच्छे तौर से। एक ऐसी महान महिला जिनकी वजह से नर्सिंग को एक सम्मानजनक पेशे के रूप में जाना जाने लगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई को 1820 को इटली में फ्लोरेंस शहर में हुआ था। उन्होंने समाज की परवाह किए बिना नर्स बनने का फैसला किया।

उस समय नर्सिंग को अच्छा पेशा नहीं माना जाता था, लेकिन फ्लोरेंस ने अपने समर्पण और सेवा की भावना से पूरी सोच बदल दी। युद्ध के दौरान उन्होंने घायल सैनिकों की सेवा की, रात में हाथ में लालटेन लेकर मरीजों को देखने भी जाती थीं। और इसीलिए उन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाने लगा। उनके प्रयासों से अस्पताल में स्वच्छता और मरीजों की देखभाल के नए नियम बने और आज भी पूरी दुनिया में उन्हें नर्स प्रेरणा के रूप में मानती हैं। नर्सों का महत्व बहुत ही अधिक होता है, क्योंकि डॉक्टर जब अपना दिशा निर्देश दे देते हैं, उसके बाद उस दिशा निर्देश के पालन करते हुए सभी जो पेशेंट्स हैं उनका ख्याल रखना सिर्फ और सिर्फ नर्सों का ही काम होता है। भारत में नर्सिंग सेवा भी आगे बढ़ रहा है और आज हजारों युवा इस पेशे को अपनाकर अपने देश में समाज की सेवा भी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए नर्सों की, तो दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी वो कभी भी अपना ध्यान पहले नहीं रखती हैं, बल्कि पहले वो पेशेंट्स का यानी मरीजों का ध्यान रखती हैं, उनकी देखभाल करती हैं, उनका हौसला बढ़ाती हैं, उन्हें अपनापन और जीवन जीने की नई उम्मीद भी देती हैं। जब भी कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती होता है तो उसे सबसे पहले जो चेहरा उसे सहारे के रूप में दिखता है वो होता है नर्स का चेहरा। डॉक्टर इलाज बताते हैं, लेकिन उस इलाज को सही समय पर पूरा करने की जिम्मेदारी नर्सें निभाती हैं। दवा देना, मरीज की स्थिति पर नजर रखना, समय समय पर जांच करना और हर परिस्थिति में मरीज का मनोबल बनाए रखना, ये सब उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। नर्सें केवल अस्पतालों तक सीमित नहीं होती हैं, गांवों, स्वास्थ्य केंद्रों, टीकाकरण अभियानों और आपदा के समय भी वे समाज की सेवा में सबसे आगे रहती हैं। कोरोना महामारी के दौरान भी हमने देखा कि जब पूरा देश घरों में सुरक्षित था, तब हमारी नर्स बहनें अपनी जान पर परवाह किए बिना मरीजों की सेवा कर रही थीं और उन्हें अपने परिवार से दूर रहकर मानवता की मिसाल पेश कर रही थी। एक नर्स धैर्य, करुणा और सेवा भाव का अद्भुत संगम होती है। कई बार मरीज दर्द और चिंता में होता है, लेकिन नर्स की एक मुस्कान उसे राहत देती है। उनका व्यवहार मरीज के मन में विश्वास जगाता है कि वो जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा। हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने में नर्सों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वे स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ के रूप में काम करती हैं। यदि डॉक्टर अस्पताल का मस्तिष्क है, तो नर्सें उसका धड़कता हुआ हृदय। आज आवश्यकता है हम उन मेहनती नर्सों को सम्मान दें, उनके समर्पण को अप्रिशिएट करें। समाज को ये समझना होगा कि नर्स का कार्य केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि मानव सेवा का सबसे पवित्र रूप है और इस दिन को खास रूप में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को खास रूप में मनाने के पीछे भी कहीं ना कहीं यही एक उद्देश्य है कि हम अपने जो नर्स हैं उनका सम्मान करना सीखें, उनके समर्पण को, उनके योगदानों को अप्रिशिएट कर सकें। जब भी कोई व्यक्ति कोई अपना

योगदान देता है किसी भी क्षेत्र में, तो उसे सिर्फ और सिर्फ जरूरत होती है एप्रिसिएशन की। बिना एप्रिसिएशन के काम करने का मनोबल भी कहीं ना कहीं कम मिलता है, और काम करने के लिए अगर हमें कहीं पुश की जरूरत पड़ती है तो ऐसे में एप्रिसिएशन एक बड़ी पुश का काम भी करता है। दोस्तों, फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 6:19 और 15 सेकंड। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका वंदना कश्यपः। आदौ मुख्य वार्ताः। राष्ट्रिय परीक्षा संस्थया अस्मिन् मासस्य तृतीये दिनांके आयोजिता नीट परीक्षा निरस्ता भविष्यतीति निर्णयः गृहीतः। भारतीय जनता दलस्य वरिष्ठ नेता डॉ हिमंत बिस्वा सरमा अनवरतम द्वितीय वारं असम राज्यस्य मुख्यमंत्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। अस्मिन् मासे चतुर्दश पञ्चदश दिनांकयोः ब्रिक्स विदेश मंत्रिणा सम्मेलनस्य आतिथ्यं भारतं करिष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्रपति भवने आयोजिते कार्यक्रमे पञ्चदशभ्यः परिचर्या वृत्तिकर्तृभ्यः राष्ट्रिय फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कारान् प्रदत्तवती। अपि च इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य सायंकाले अहमदाबाद नगरे गुजरात टाइटंस अथ च सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये स्पर्धा भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रिय परीक्षा संस्थया अस्मिन् मासस्य तृतीये दिनांके आयोजिता नीट परीक्षा निरस्ता भविष्यतीति निर्णयः गृहीतः। सामाजिक माध्यमेषु प्रकाशिते सन्देशे संस्थया सूचितं यत् छात्रहितं राष्ट्रिय परीक्षा प्रणाल्याः विश्वसनीयता च रक्षितं एषः निर्णयः स्वीकृतः। संस्थया स्पष्टीकृतं यत् प्रश्नपत्र सम्बद्धानां आक्षेपाणां विस्तृत अन्वेषणार्थम् एषः विषयः केन्द्रीय अन्वेषण अभिकरणाय प्रेषितः। एतदर्थं संस्था पूर्ण सहयोगं प्रदास्यति तथा अन्वेषणाय आवश्यकानि साहित्यानि अभिलेखानि साहाय्यं च उपलब्धं करिष्यति। केन्द्रीय संस्थाभिः आरक्षक बलैः च सह समन्वयनान्तरं प्राप्त सूचनानां आधारेण एषः निर्णयः कृतः। भारतीय जनता दलस्य वरिष्ठ नेता डॉ हिमंत बिस्वा सरमा अनवरतम द्वितीयवारं असम राज्यस्य मुख्यमंत्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। गुवाहाटी नगरस्य खानापाड़ा स्थिते पशु चिकित्सा महाविद्यालयस्य प्रांगणे आयोजिते समारोहे राज्यपालः लक्ष्मण प्रसाद आचार्यः तस्मै पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं प्रादापयत्।
1: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরৰ নামত শপথ লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
0: ডক্টৰ শর্মা মহোদয়েন সহ অন্য চত্বৰহ অপি মন্ত্ৰীমণ্ডলহ মন্ত্ৰিত্বেন শপথম স্বীকৃতৱন্তহ। তেষু ভাজপা দলস্য पक्षतः रामेश्वर तेली अजंता नियोग च असम गण परिषदः पक्षतः अतुल बोरा तथा बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट पक्षतः चरण बोरो च सम्मिलिताः सन्ति। अस्मिन् समारोहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अनेके केन्द्रीय मंत्रिणः तथा एनडीए शासित राज्यानां मुख्यमंत्रिणः अपि उपस्थिता आसन्। अनेन सह डॉ शर्मा

आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का संजयिता चैनल। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल की तरफ से खास अभी अनाउंसमेंट है, तो आइए एक विशेष सूचना है उसे सुनते हैं। 136वीं डाक अदालत के विषय में मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल की अध्यक्षता में दिनांक 17/6/2026 को पूर्वाहन 11:30 बजे मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल योगायोग भवन P36 CR Avenue कोलकाता 700012 में गूगल मीट यानी वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 136वीं डाक अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की डाक सेवाओं से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संपूर्ण ब्योरे जैसे कि संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकरणों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री एस सी दास, सहायक निदेशक, डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, पश्चिम बंगाल सर्कल, P36 CR Avenue, कोलकाता 700012 के नाम भेजी जाए और ये डाक या ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in या adpgcowb@gmail.com या फिर pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 1/6/2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट वीडियो सम्मेलन के जरिए डाक अदालत में उपस्थित हों। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या 0332212050 या फिर 0332212612 या फिर 0332212500 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत के आवेदन पर डाक अदालत शब्द लिखना होगा। डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विविधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई।

200-297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। अब शुरू हो रहा है मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम गुलगुलशन।

दोस्तों, अभी भी आप सुन रहे थे भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाज में ये गजल, और गजलों का सिलसिला आगे यूं ही बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं अनूप चिलोटा की आवाज में ये गजल।

तो ये तुमको देखा तो ये ख्याल आया। गजलों के शब्द जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे दिल के बेहद करीब होते हैं, हमें बहुत ही स्पेशल महसूस कराते हैं। और गजलों को सुनते सुनते सफ़र कैसे बीत जाता है ये फिलहाल पता ही नहीं चलता। आपको बता दें, स्टूडियो की घड़ी में समय 6:52 और 20 सेकंड। आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। फिलहाल पेश है आज के कार्यक्रम की अगली गजल। इस गजल को सुनते सुनते हम चलेंगे अपने न्यूज ब्रेक के पास। तो फिलहाल आप सभी के लिए जो अगली गजल है ये है अनूप जलोटा की आवाज में। तो आइए सुनते हैं इस गजल को कार्यक्रम गुलगुलशन के अंतर्गत। फिलहाल देविका अभी के लिए आपसे इजाजत लेती है। इस गीत के ठीक उस पार अगला कार्यक्रम आपका इंतजार कर रहा है।

वेल फ्रेंड्स, स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है कि अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे न्यूज़। तो न्यूज़ जो है वो आप सुनेंगे 7 बजे से, तो सुनते रहें 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। उसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं को जिम्मेदार राष्ट्र बताने वाले देशों को इस बात पर विचार करना होगा कि आतंकवादी ढांचे की रक्षा के प्रयासों का समर्थन उनकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है। भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि ये संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 7:31। आप सुन रही हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। और फिलहाल आप सभी को बता दें कि शुरू हो चुका है दैनिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम दर्पण। दर्पण के अंतर्गत आप सभी के लिए सबसे पहले एक नज़र। और आज है 12 मई यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज एक खास दिवस मनाया जाता है और ये है इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। इस दिवस का उद्देश्य है पौधों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जो भूख को कम करने और गरीबी मिटाने के, पर्यावरण रक्षा करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बहुत जरूरी है।

दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने इसे मार्च 2022 में इस दिवस की घोषणा की थी। और आपको बता दें कि स्वस्थ पौधे पृथ्वी पर जीवन का आधार है, जो हमारे भोजन का 80% हिस्सा प्रदान करते हैं। पौधों को कीटों और बीमारियों से बचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। यदि हम अपने पौधों को सुरक्षित रखते हैं तो हमें भोजन ठीक से प्राप्त हो सकता है, क्योंकि स्वस्थ पौधे ही स्वस्थ भोजन प्रदान कर सकते हैं हमें, क्योंकि उन्हीं से हमें ज्यादातर चीजें मिलती हैं। और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है प्रति वर्ष आज ही के दिन, यानी कि 12 मई के दिन, और इसे वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, ताकि पादप स्वास्थ्य की रक्षा करें, ताकि ये हमारे समाज के विकास में अपना योगदान दे सके और हम अपने आप को एक तरह से जो ये प्लांट्स हैं ये हमें सुरक्षा ही प्रदान करते हैं, क्योंकि इनसे हमें खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं। और फिर अगर ये प्लांट्स सही रहेंगे तो हमें जो भी चीज़ें मिल रही हैं वो शुद्ध यानी कि प्योर मिलेंगी।

दोस्तों स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 6:38 और फिलहाल आप सुन रहे थे के आवाज में ये गीत कार्यक्रम दर्पण के अंतर्गत।

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 7:45 और 45 सेकंड। अभी आप सुन रहे थे फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो से ये गीत। अगला गीत विशाल ददलानी की आवाज में फिर छिड़ी बात के अंतर्गत। और दोस्तों आपको बता दें, कई बार कुछ रिश्ते जिंदगी में ऐसे होते हैं जो कि बहुत खास होते, क्योंकि उनके होने की वजह से हमें लगता है कि अगर ये व्यक्ति या ये इंसान हमारी जिंदगी में है तो आई बी ऑल राइट, यानी हम खुश रहेंगे। और हमारी जो ये खुश रहने की जो इच्छा है, इस इच्छा को कहीं ना कहीं हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कई बार कुछ दोस्त ऐसे मिल जाते हैं जो हमारे लिए सिर्फ दोस्त न रह के बल्कि हमारे अपने बन जाते हैं, हमारे परिवार जैसे बन जाते हैं। और ये हमारे लिए कहीं ना कहीं ऐसी प्रेम की भावना रखते हैं, सेवा की भावना रखते हैं कि उनके मन में हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ अच्छा कर गुजरने की इच्छा होती है। फिलहाल आप सभी के लिए पेश है विशाल ददलानी की आवाज में ये गीत।

वेलफ्रेंड स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल समय हो चला है 7:54 और समय का इशारा है कि आप सभी से लेना है विदा। कार्यक्रम दर्पण के अंतर्गत आज के अंतिम गीत के साथ देविका लेती है आपसे इजाजत। नमस्कार।

0: कथित नीट परीक्षा पेपर लीक संबंध में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। तमिलनाडु में AIADMK पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। और सात्विक साई राज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। NEET UG परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष CBI टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। NEET UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। जांचकर्ता अब संदिग्ध नेटवर्क के विस्तार और परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों के प्रसार से जुड़े धन के लेन देन की जांच कर रहे हैं। दल ने कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। सूत्रों के अनुसार इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। अगले दिन 4 NEET परीक्षार्थियों को भी गिरफ्तार किया गया। उधर नासिक पुलिस ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित NEET UG 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को NEET UG परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को CBI को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर 2 गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड़ापड़ी के पलानीसामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न देने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने SP वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। सरकार को अम्मा मक्कल मुनित्र कड़गम के एकमात्र विधायक S कामराज का भी समर्थन प्राप्त है, जिन्हें आज ही उनकी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय कल से ही विश्वास मत से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं से बैठकें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंत नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा सहित 4 मंत्रियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने कुशल प्रशासक के रूप में पहचान बनाई है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अपने हाथ में ले ली है। मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। इस बीच पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। न्यायालय ने आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं।
2: ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक सटीक, लक्षित और नपातुला जवाब था। इसका उद्देश्य उन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था जो न केवल पाकिस्तानी राज्य द्वारा प्रायोजित है बल्कि पाकिस्तान से और उनके इशारों पर चलता है। अब यह उन राष्ट्रों को ही तय करना है, उन पर ही निर्भर करता है जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। श्री शाह ने कहा कि इस कदम से अवैध खातों का तेजी से पता लगाया जा सकेगा और उन्हें समाप्त किया जा सकेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आर्थिक, तकनीकी अथवा भू राजनीतिक हर तरह की बाधाओं का सामना करने में सक्षम है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि खंडित भू राजनीतिक और व्यवसायिक परिस्थितियों के कारण दुनिया हर दिन संकटों का सामना कर रही है, लेकिन भारत ने लगातार प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसरों में परिवर्तित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की खरीद टालने और विदेश यात्रा से बचने की अपील एक सकारात्मक कदम और एहतियाती उपाय है। उन्होंने कहा कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि इस समय विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए।
3: विपक्ष को चाहिए कि वो पैनिक ना फैलाए, भ्रम की राजनीति ना करे और आपदा में अवसर की खोज और आविष्कार ना करें। और जिस तरह से कोविड की महामारी में भी विपक्ष ने ऐसी ही भूमिका निभाई थी, लेकिन भारत कोविड की महामारी से उभर पाया और मजबूत होकर निकल के आया, वैसे ही ये जो वैश्विक संकट है, चुनौतियां हैं इसमें, लेकिन भारत में वो मजबूती है कि इन चुनौतियों के सामने मजबूती से खड़ा भी रहेगा और मजबूत होकर उभर के आएगा।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय

0: विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
1: आईसीएसईआर समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये आईसीएसईआर के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स चिकित्सा नवाचार और स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता के क्षेत्र में देश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। आज नई दिल्ली में एम्स के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि एम्स ने किफायती दरों पर रोगी देखभाल और आधुनिक चिकित्सा के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच बंबई शेयर बाजार में लगभग 2% की गिरावट आई है। अन्य आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
2: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 1.9% के नुकसान से 1456 अंक लुढ़ककर 74,559 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.8% की गिरावट से 436 अंक गिरकर 23,380 के स्तर पर रहा। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 32 पैसे की गिरावट से 95.63 रुपए प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर दर्ज हुआ।
0: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लगातार चौथा वर्ष है जब बैंक मुनाफे में रहे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। गुजरात में जनगणना का पहला चरण 1 जून से शुरू होगा। लोगों को पहली बार भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वगणना पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से जनगणना में शामिल होने का अवसर मिलेगा। 17 से 31 मई तक लोग पोर्टल पर स्वगणना पूरी कर सकेंगे। 1 से 30 जून तक नामित जनगणना अधिकारी घर घर जाकर जानकारी एकत्र करने के लिए परिवारों की सूची तैयार करेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने आज रीभोई जिले के भोईरिम्बोग में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राज्य के पारंपरिक रेशम उद्योग को मजबूत करना और बुनकरों के लिए बेहतर बाजार पहुंच बनाना है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन में पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया के पुत्र एवियान सिहा और बगास मोलाना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि हरिहरन अमसा कारुनन और एमआर अर्जुन तथा महिला डबल्स में रितुपर्णा श्वेतापर्णा पांडा को हार का सामना करना पड़ा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में लक्ष्य फोगाट ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि 4 अन्य मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल मुकाबलों में कांस्य पदक हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए kmygov.gin पर लॉगिन कर सकते हैं। सीबीआई अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: 2%, which is quite a massive drop. So what were the measures taken that made this happen?
1: Almost 6-7 years back, if you look at, we imported a large percentage of our toys, especially low-cost plastic and electronic toys and all that. And majority of our imports were largely dominated by Chinese manufacturing ecosystems. Whereas Indian toy manufacturers struggled to compete on pricing, scale, and so on and so forth. This was primarily linked to, I'd say, 6 things. So you had the mandatory BIS quality standards for toys that came in. We had the higher custom duties. We had stricter compliance and testing requirements for imported toys. And we also brought in the anti-dumping and quality control measures. Now, these 4, along with the vocal for local push and Make in India push, which sort of saw enhanced manufacturing capacity locally for toys, and the consumer sentiment, which basically pushed against using imported toys, which was so easy, so cheap, and it was almost like majority of the toys were dumped into India.
0: Vinod, we also have with us at this point of time a toy maker, Chitari. He joins us from Maharashtra. Let's hear what he has to say about toy making and what transformation that has come into the toy industry. Chitari, aapka bahut swagat hai Money Talks mein.
2: Thank you, sir.
0: Aap bataiye ki aapki kahani kya hai?
2: मेरा नाम अमित चितारी है. मैं सावंतवाड़ी से आर्टिजन करके हूँ और हम लोग एक मेरी ये फोर्थ जनरेशन है. अभी भी हम लोग वुडन टॉयज बना रहे हैं इधर सावंतवाड़ी में.
0: ओके.
2: स्पेशली हमारा जो टॉयज है वो गंजीफा आर्ट रिलेटेड है. गंजीफा ट्रेडिशनल आर्ट है, उससे जो कलर स्कीम है वो उसमें जुड़ी है.
0: ओके. तो आप मुझे ये बताइए कि कुछ सालों से आपने क्या बदलाव देखा है टॉय इंडस्ट्री में आते हुए?
2: अभी लोगों का माइंड थोड़ा चेंज हो गया है. लोग फिर से वुडन टॉयज के बढ़ रहे हैं क्योंकि प्लास्टिक वगैरह को ज्यादा यूज नहीं करना चाहते क्योंकि ये ऑर्गेनिक जो मतलब जो लकड़ी का खिलौना है ना उसको ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं लोग अभी.
0: ओके. और आपको क्या सरकार की योजनाओं से कुछ फायदा हुआ है?
2: बिल्कुल फायदा हुआ है. उसकी वजह से हमने थोड़े हमारे वर्कशॉप में ऑटोमेशन मतलब सीएनसी मशीन्स वगैरह खरीद लिए हैं तो उससे प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है हमारा.
0: और आप क्या सोचते हैं कि आजकल जो आपके ग्राहक हैं वो ज्यादा अवेयर हैं सस्टेनेबिलिटी के? वो जानते हैं कि प्लास्टिक से कितने लाभ नहीं मिलते हैं जितना लकड़ी के टॉयज से मिलते हैं, बच्चों के लिए वो ज्यादा सेफ है. क्यों आजकल ये अवेयरनेस आ गई है क्या लोगों के बीच में?
2: बिल्कुल सर, आ गई है क्योंकि ज्यादा करके लोग है ना अपने बच्चों के तरफ से ज्यादा सेफली सोचना शुरू कर दिया है क्योंकि लकड़ी का कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता. और हम लोग जो लकड़ी यूज करते हैं वो स्पेशली जामुन की लकड़ी यूज करते हैं.
0: ओके.
2: बच्चे के लिए तो जामुन की लकड़ी जो रहती है ना वो अगर बच्चों ने ना मुंह में डाली तो उसका साइड इफेक्ट नहीं होता है.
0: तो आप क्या आपके ये जो टॉयज हैं ये भारत से बाहर भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं?
2: हाँ सर, होते हैं लेकिन हम लोग नहीं करते, हमारे से लेके दूसरे लोग करते हैं.
0: चितारी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए.
2: थैंक यू सर.
0: सो विनोद, कमिंग बैक टू यू आफ्टर लिसनिंग टू व्हाट चितारी सेड टू अस दैट ही इज बीन इन दिस बिजनेस फॉर द पास्ट 4 decades वेयर चाइना हैज डोमिनेटेड द ग्लोबल टॉय मार्केट. नाउ हाउ इज इंडिया नाउ कम्पीटिंग लाइक पीपल लाइक चितारी competing with them, and what is our edge over Chinese manufacturers?
1: If you look at the overall toy ecosystem, I feel micro and small enterprises have largely responded very, very positively to the government's initiatives in the toy sector. And I think the policy push is one of the strongest examples of how targeted regulatory and industrial interventions can primarily revive domestic manufacturing ecosystem. So many toy manufacturers used to talk to us about the fact that there was intense pressure from low-cost imports, especially in those that were in the unorganized and mass market segments. A large number of small manufacturers shut down operations or shifted to trading imported products due to unsustainable competition. The government's interventions, especially the mandatory BIS quality standards and the high import duties, fundamentally changed the industry sentiment after the Vocal for Local campaign and the Honorable Prime Minister's reiterating over and over again that we need to look at, you know, how do we get back our own manufacturing and stop buying toys from all over the world. So if you ask me how MSMEs have reacted, a lot of them, like Chitari just talked about, have restarted or expanded domestic production capacities. They have increasingly adopted quality standards They have modernized operations, improved product safety, and also

0: दिसंबर में इस बात की घोषणा करी थी, तो क्या मानते हैं किस तरह से ये एक गेम चेंजर के रूप में आएगी?
1: गेम चेंजर सेंस में इसको कहना चाहिए कि जो खामियां थी, लंबे अरसे से चली आ रही थी लगातार खामियां, करप्शन हो रहे थे, लोगों के नाम गलत तरीके से चढ़ा करके कोई और पैसे वसूल रहा था, ये खामियां दूर होंगी। और जो विकसित भारत की सोच है कि अगर देश का विकास होना है तो जो भी निर्माण हो वो स्थायी हो, उस दिशा में ये जी राम जी की पहल जो है वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी दिशा में जाएगी। और अगले 5-7 साल में जब इसका इम्पैक्ट दिखना शुरू होगा तब ये पता चल जाएगा कि जिस सोच के साथ इसे जमीन पर उतारने की कोशिश हुई है वो पूरा हो गया, और सही तरीके से अगर इसका कार्यान्वयन हुआ तो मुझे विश्वास है कि वो पूरा होगा।
0: जी चलिए सुनते हैं हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसकी जानकारी देते हुए क्या कहा और कब से लागू हो रही है इसके बारे में उन्होंने बताया।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 1 जुलाई से अब विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार चाहने वाले हमारे मजदूर भाइयों को बहनों को अब 100 नहीं साल में 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। बीच के समय में मनरेगा के सारे प्रावधान लागू रहेंगे, अधूरे काम अभी 1 जुलाई के पहले तक मनरेगा के अंतर्गत ही पूरे किए जाएंगे। अभी व्यापक पैमाने पर राज्यों से सलाह मशवरा करके नियम बनाने की प्रक्रिया जारी है। विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत अधिकतम राज्यों को 6 माह का समय रहेगा अपेक्षित तैयारी के लिए।
0: आशुतोष जी, जिस तरह से मंत्री जी ने भी कहा कि 6 महीने का समय दिया गया है तैयारी करने के लिए, लेकिन जब तक जैसे कि 1 जुलाई से ये प्रावधान लागू होने हैं और तब तक मनरेगा के प्रावधान ही लागू रहेंगे, तो इसमें क्या कहीं कोई संशय है या कुछ इस तरह की बात है जिसमें लोगों को समझ नहीं आ रहा या राज्यों से कोई अपेक्षा समर्थन नहीं मिल पा रहा?
1: जो विपक्षी राज्य हैं उनकी ओर से ये सवाल उसी समय से उठने शुरू हुए थे कि इसमें अगर 40% राज्यों को खर्च करना पड़ेगा तो राज्यों पर भार पड़ेगा और वो समस्या होगी। तो विपक्षी राज्यों की ओर से ये समस्याएं आ रही, वो उनकी ओर से ये सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन जो दूसरी बातें हैं इसमें कि देखिए, जो नए प्रावधान इसमें किए गए कि भाई आप 125 दिन की का गारंटी देंगे, आपकी जो निगरानी व्यवस्था होगी, निगरानी तंत्र होगा वो बिल्कुल जमीन पर मौजूद होगा, अगर 1 सप्ताह का साप्ताहिक कोई काम होता है तो सप्ताह खत्म होते ही उसे तत्काल पेमेंट होना चाहिए, इस तरीके की तैयारियां। और प्लस ये कि आप एक तैयारी इस लिहाज से करते हैं कि हमें किस तरीके के कंस्ट्रक्शंस करने हैं, क्योंकि इसमें पंचायतों की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है, बहुत सारी योजनाएं जो पहले से चल रही थी उसको इसमें समाहित किया जाना है, तो इस तरीके की तैयारी की बात थी। देखिए अदरवाइज तो क्या है, 2005 से ही ये योजना चल रही थी तो चल ही रही थी, जो बदलाव हुए उसको देखते हुए जो तैयारी राज्यों को करनी है, उस लिहाज से जो ग्रामीण विकास मंत्री ने जो बात कही मुझे वही लगता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन की बात नहीं है।
0: 1 जुलाई से इस तरह की योजना लागू हो रही है और इसमें जिस तरह से आपने भी बताया कि इसमें कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं, नए कामों को भी, और साथ ही साथ समय से भुगतान को सुनिश्चित किया गया है, और अगर भुगतान अगर समय से नहीं होता तो क्या किसी तरीके का उनको हर्जाना भी मिलने की इसमें कुछ प्रावधान है?
1: जी बिल्कुल, ये अच्छी बात इसमें है, क्योंकि देखिए जो पुराने रिकॉर्ड जो बताते हैं मनरेगा के टाइम से जो चलती रही थी बात, उसमें ये समस्या शुरुआत से आ रही थी कि काम कर लिया भुगतान नहीं हो रहा है, महीनों महीनों पड़े हुए हैं, और फिर देने के लिए जो है सो मजदूर को रिश्वत देनी पड़ रही है, इस तरीके की समस्या। तो इसमें बाकायदा ये इंतजाम किया गया, क्योंकि ये तो रिकॉर्ड में होगा ना कि आपने आज से काम शुरू किया और अगले 20 दिन तक पहले काम किया, ये रिकॉर्ड में है, और उसमें प्रोविजन है कि आपको जो है कार्य संपन्न होने के बाद मैक्सिमम जो है 15 डेज का दिया गया है कि उसके बीच में आपको भुगतान करना है, अगर आप नहीं करते हैं तो पर डे के हिसाब से हर्जाना उसमें जोड़ना होगा। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि तभी तंत्र ज्यादा मजबूती से काम कर पाता है जब उसमें एक जवाबदेही तय कर दी जाती है, तो यहाँ जवाबदेही
0: जवाबदेही की आपने बात करी तो इस बारे में भी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कुछ जानकारी दी है।
2: विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत रोजगार देने के लिए भारत सरकार ने ही अपने बजट में 95,600 करोड़ से ज्यादा की राशि का प्रावधान किया है। राज्यों ने भी अपने अपने बजट में विकसित भारत जी राम जी को लागू करने के लिए प्रावधान किया है, और केंद्र और राज्यों की कुल राशि अगर जोड़ ली जाए तो 1,51,000 करोड़ रुपए से ज्यादा।

0: 15 दिन के अंदर प्रक्रिया पूरी करके उनके खाते में पैसा आ जाए। 15 दिन अंदर अगर पैसा नहीं आया तो हमारे मजदूर भाई बहन विलंबित भुगतान के पात्र भी होंगे। जो देरी से देंगे तो उस पर एक निश्चित राशि अलग से देनी पड़ेगी, और मांगने पर अगर रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता भी देना पड़ेगा।
1: जिस तरह से मंत्री जी ने कहा कि अगर मांगने पर रोजगार नहीं मिलता तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, तो कहीं ना कहीं कोई संशय की गुंजाइश तो बनती नहीं है। ये योजना पहले की योजना से किस मायने में अलग देखते हैं आप?
2: दो तीन बड़े अंतर हैं। अगर सिर्फ प्रावधान की बात करें, प्रावधान की सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर उसमें 100 दिन की गारंटी थी तो इसमें 125 दिन की गारंटी है, और राज्यों को ये तय करने का अधिकार दिया गया कि आप कौन सा लीन पीरियड मानते हैं और कौन सा ऐसा पीरियड मानते हैं जिसमें काम नहीं दिया जा सकता। ये दोनों चीजें हैं उसमें। रेनी सीजन है, अब पता चला उस बीच में कोई रोजगार मांगने आ जाए तो कैसे देंगे आप, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम होना है वहां पर। तो इस तरीके की छूट भी है राज्यों को। इसमें बिल्कुल संशय नहीं है कि ये थोड़ी बहुत घटनाएं होती थी कई जगहों से कि काम मांगने पर भी काम नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि इंतजार करवाते थे वो जो जिलाधिकारी होते थे, वो ये देखते थे कि भाई अभी काम शुरू करना है तो फिलहाल इसको टाल कर रखो, जो एक होता है ना कि फिलहाल आप इसको नजरअंदाज करो, फिर कोई काम शुरू होगा तो फिर महीने भर बाद 45 दिनों बाद एक कोई काम शुरू हो रहा है तो उसमें जोड़ने की कोशिश होती थी। इसमें जो अच्छी बात है नई स्कीम में क्या है कि विभिन्न योजनाओं के तहत बहुत सारे कार्य राज्य सरकारों के भी चल रहे होते हैं। गांव में हॉस्पिटल बन रहे हैं, कोई और काम हो रहा है, बहुत तरीके के काम, कोई तालाब खुदाई की बात हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उसको इससे जोड़ा जा सकता है। जो इन्होंने बात कही कि केंद्र और राज्यों के पैसे मिला करके केंद्र ने 95,000 करोड़ रुपीस का इसमें प्रोविजन किया है, और राज्यों की ओर से जो 40% की बात थी उसको जोड़ करके उन्होंने वो कहा। अब इसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई व्यक्ति जो अनस्किल्ड लेबर जिसकी बात हम करते हैं, क्योंकि इसमें अनस्किल्ड लेबर को ही मिलता है, वो कोई काम मांगे और उसे काम नहीं दिया जा पाए, मुझे ऐसी कहीं गुंजाइश नहीं दिखती है। फिर भी अगर कहीं इस तरीके की स्थिति होती है तो मुझे लगता है वहां जरूर जानबूझकर लापरवाही हो रही है। ये एक सबसे बड़ा अंतर है कि बदलाव दिखेगा मुझे लगता है
1: जी। क्या इसमें राज्य सरकार या पंचायत के स्तर पे भी जो कुछ कार्य होते थे उसमें इसमें समाहित किया गया है उनको, और जिससे कि आपने भी
2: बिल्कुल
1: कि जी, बहुत जी, सारे कार्य अलग अलग तरीके से चलते रहते थे लेकिन सबको एक समाहित करके जिसमें कि धन का आवंटन की कमी ना आए, क्योंकि एक बड़ा भाग इसमें बजट में भी इसके लिए प्रस्तुत किया गया है।
2: यही बात जो राज्य विरोध कर रहे थे उनको यही समझाने की कोशिश हुई थी कि 40% ये आप पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ रहा है। अगर कोई भी निर्माण हो रहा है राज्य में तो वो राज्य के फायदे के लिए है या नहीं, तो राज्य के लिए फायदे के है तो राज्य उसमें हिस्सेदारी क्यों नहीं करेंगे। राज्य के लोगों के फायदे के लिए है कि नहीं कि उन्हें रोजगार मिलेगा, तो फिर राज्यों की हिस्सेदारी क्यों नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदारी और जवाबदेही, ये दोनों चीज इसमें समाहित किया गया है, जिससे मुझे लगता है ये ज्यादा प्रभावी होगा, जमीन पर ये दिखना शुरू होगा
1: जी। इस बारे में केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि एक बड़ी धनराशि इसके लिए रखी गई है और इसमें कौन कौन से कार्य कराए जा सकते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने कुछ जानकारी दी है।
0: 1,51,000 करोड़ से ज्यादा की विशाल धनराशि से गांव में इंफ्रा के सारे काम व्यापक पैमाने पर होंगे। जल संरक्षण के काम, गाँव में अधोसंरचना के काम, सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, आंगनबाड़ी भवन, खेत, सड़क, जो जरूरी है सब किए जा सकेंगे। आजीविका मूलक काम भी, सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदी हो, एफपीओ हो, उनके लिए वर्किंग शेड जैसी कई अधोसंरचनाएं भी बनाई जा सकेंगी, और प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए भी संरचनाएं जैसे रिटर्निंग बाल वगैरह, अगर नदी के किनारे कोई गांव है या जहाँ पानी भरता है तो वैसे काम भी लिए जा सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत जो काम करने वाले हमारे कर्मचारी साथी है उनको पर्याप्त और समय पर वेतन का भुगतान हो, इसके लिए प्रशासनिक व्यय को भी बढ़ा के 6-9% कर दिया गया है। मजदूरों की जिंदगी में एक नए सवेरे का आगाज हो रहा है, और विकसित भारत के लिए विकसित गांव बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी का पूरा करने में यह योजना मील का पत्थर साबित होगा।
1: जैसे केंद्रीय मंत्री ने बताया कि विकसित गांव बनाने की तरफ ये एक बड़ा कदम है, तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि क्या गांव के आसपास ही उनको रोजगार मुहैया कराया जाएगा, इसके लिए समर्पित होगा, या उसमें कहीं दूरी का भी कोई प्रावधान नहीं है?
2: जो इसकी मंशा है वो यही है कि गांव के आसपास जो जहां के रहने वाले हैं उसके आसपास ही रोजगार मुहैया हो, और चूंकि बहुत बड़े स्तर पर कार्य चल रहे होते हैं हर जगह, कार्य और नए शुरू किए जा सकते हैं। अब जैसे इन्होंने बात कही कि जल संरक्षण, अब जल संरक्षण आज इसके

0: की प्राथमिकता में शामिल है, तो जल संरक्षण को सबसे ऊपर रखा गया। इसके अलावा एक खूबसूरत बात इसमें जोड़ी गई है कि आपदा से निपटने की तैयारी। अब देखिए, आपदा से निपटने की तैयारी कई मिनिस्ट्री के लेवल पे चल रही है, जिसमें होम मिनिस्ट्री भी शामिल है और उसमें बहुत सारी मिनिस्ट्री शामिल है। उसमें वाटर रिसोर्सेस मिनिस्ट्री भी शामिल है, केंद्र से लेकर के राज्य तक। यानी एक पूरे सहयोग की बात होगी कि हर मिनिस्ट्री केंद्र से लेकर के राज्य तक एक दूसरे से सहयोग करके ऐसी अधोसंरचना का, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा होगा जो स्थायी होगा और वो हमेशा के लिए देश के काम आएगा। तो जाहिर तौर पर उसमें गांव तो शामिल होंगे ही। आप ये मान के चलिए कि अधिकतर जो इसमें लाभ मिलना है वो गांव को मिलना है। शहरों में तो बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट आ रहे होते हैं कहीं ना कहीं से, गांव में ही समस्या सबसे ज्यादा खड़ी होती है, जहां राज्य सरकार भी कई बार हिचकिचाती है और केंद्र सरकार से जो पैसे जा रहे हैं कई बार वो खर्च नहीं हो पाते हैं ढंग से, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। इस स्कीम के जरिए मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायदा गांव को होगा, और इसीलिए बात हो रही है ना कि गांव, हम लोग तो हमेशा से बोलते रहे कि भारत गांव का देश है, बचपन से हम लोग ये पढ़ते भी रहे हैं। गांव विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा, यही इसकी मंशा है।
1: और शहरों पे भी जो ग्रामीण का जो बोझ होता है, अचानक से शहरों पे शहरीकरण का बोझ है, शायद उसको भी कम करने में मदद मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्र का भी विस्तार होगा। एक महत्वपूर्ण जो मैं इसमें बात देख रहा था कि 5 किलोमीटर से अगर दूर होगा कोई कार्यस्थल तो उसके लिए मजदूरों को कुछ अतिरिक्त भुगतान भी किया जाएगा, ये शायद इस योजना को काफी आकर्षक बनाता है।
0: जी बिल्कुल। अब अगर कोई गांव का एक मजदूर, आप उसे 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक काम दे रहे हैं और दिन भर की दिहाड़ी के हिसाब से, जो चूंकि इसमें मिनिमम वेजेस का ही ये एक हिसाब होता है
1: जी,
0: उस पे तो वो बहुत आकर्षक कभी नहीं हो सकता। इसीलिए ये बात देखिए, जो पहली योजना थी मनरेगा, उसमें भी ये बात थी कि उस घर के आसपास, लेकिन उसमें कोई एक डिस्टेंस को डिमार्केट नहीं किया गया था कि हाँ 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो आसपास आप कुछ भी बोल सकते थे, 10 किलोमीटर भी बोल सकते थे। तो ये बताना कि भाई 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में हम, ये बहुत आकर्षक बनाता है। तो एक तो 125 दिन की गारंटी, दूसरा पेनल्टी अगर उनको समय पर भुगतान नहीं किया जाता है उनका जो वेतन है, और तीसरा गांव के बिल्कुल आसपास। ये तीनों चीजें हैं जो इसे बहुत ही आकर्षक बनाएगी
1: जी, क्योंकि ये एक अधिनियम ऐसा है जिसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय योजनाओं का भी समन्वय है, तो एकल योजना बहुवित्त पोषण दृष्टिकोण को इससे काफी बढ़ावा मिलता हुआ नजर आता है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि राज्य सरकार पे अलग योजनाएं चल रही हैं उसी मतलब की, और केंद्र सरकार भी इसी तरह की कोई योजना चला रही है, और शायद गांव के लेवल, पंचायत लेवल पे भी, स्थानीय स्तर पे भी इस तरह की कभी कभी योजनाएं आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उसका समावेशीकरण हो जाएगा तो उसमें बेहतर होगा कि एक तरह की योजना जिसकी कि खासतौर पर जरूरत है ग्रामीण के क्षेत्रों को, उसका पूरा भरपूर लाभ मिल सके।
0: बिल्कुल, यही मंशा है, कन्वर्जेंस। जितनी स्कीम चल रही है उसका कन्वर्जेंस होना चाहिए, तभी क्या है कि आप पैसे को सही तरीके से खर्च कर पाएंगे और सही तरीके से निर्माण भी हो पाएगा। ये बहुत जरूरी इसका हिस्सा था और वही जरूरी है देश के लिए हर तरीके से।
1: चलिए, तो मोटे तौर पे ये मान लिया जाए कि गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार मिलेगा, जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा और चरम मौसम से बचाव संबंधी कार्य इसमें लागू किए जा सकेंगे। 100 दिन के मुकाबले 125 दिन का रोजगार इसमें सुनिश्चित किया गया है और साथ ही साथ भुगतान भी समय पर मिले इसकी गारंटी भी की गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो शायद इस योजना को पहली योजना से ज्यादा आकर्षक बनाती हैं और साथ ही साथ जिम्मेदारी भी तय करती हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। आशुतोष जी, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: मंथन।

0: सैन्य न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला कानून पारित किया। नेपाल के लुम्बिनी प्रांत में एक यात्री बस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत और 20 घायल और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती है।
1: ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक सटीक, लक्षित और नपातुला जवाब था। इसका उद्देश्य उन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था जो न केवल पाकिस्तानी राज्य द्वारा प्रायोजित है बल्कि पाकिस्तान से और उनके इशारों पर चलता है। अब यह उन राष्ट्रों को ही तय करना है, उन पर ही निर्भर करता है जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है।
0: भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयन से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्तारोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ब्रिटेन में स्थानीय चुनावों में लेबर पार्टी की हार के बाद प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ता जा रहा है और आज उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के पहले सदस्य को खो दिया। आवास, समुदाय और स्थानीय सरकार मंत्री मियाट्टा फाहनबुले ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने श्री स्टार्मर से देश हित में सही कदम उठाते हुए पद छोड़ने की समय सीमा तय करने का आग्रह किया। उधर श्री स्टार्मर ने पद छोड़ने की बढ़ती मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए अपने आलोचकों को गलत साबित करने का संकल्प लिया। इससे पहले खबरों में कहा गया था कि इंग्लैंड और वेल्स में हाल में हुए स्थानीय चुनावों में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद 60 से अधिक लेबर सांसद श्री स्टार्मर से पद छोड़ने का आग्रह कर रहे थे। कई लेबर सांसदों ने सार्वजनिक और निजी तौर पर चिंता व्यक्त की है कि श्री स्टार्मर का नेतृत्व अगले आम चुनाव से पहले पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। इसराइल की संसद नेसेट ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमलों के आरोपी फिलिस्तीनी आतंकी

0: वादियों पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष सैन्य न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए विधेयक पारित कर दिया है। खबरों के अनुसार विधेयक के पक्ष में 93 मत पड़े और विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा। एक रिपोर्ट।
1: ये कानून इसराइल की सैन्य न्याय प्रणाली के अंतर्गत विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान करता है, जिसमें 7 अक्टूबर के हमले के दौरान इसराइल के सुरक्षा बलों द्वारा पकड़े गए और तब से हिरासत में रखे गए लगभग 300 कथित आतंकवादियों पर मुकदमा चलाया जाएगा। इस कानून के तहत न्यायाधिकरण को नरसंहार, इसराइल की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने, युद्ध छेड़ने, युद्धकाल में शत्रु की सहायता करने और आतंकवाद सहित विभिन्न आरोपों में आरोपियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार होगा। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 को लगभग 5,000 से 6,000 फिलिस्तीनी आतंकवादी जमीन, समुद्र और हवाई मार्ग से इसराइल में प्रवेश कर गए और गाजा सीमा के पास कई स्थानों पर समन्वित हमले किए, जिनमें मुख्य रूप से हमास और अन्य सशस्त्र समूहों के सदस्य शामिल थे। इन हमलों के परिणाम स्वरूप लगभग 1,200 लोगों की मौत हुई और 251 बंधकों का अपहरण किया गया, जिनमें से कई को गाजा ले जाया गया। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
0: इसराइल में अमेरिका के राजदूत माइक हाकाबी ने कहा है कि ईरान युद्ध के दौरान इसराइल ने आयरन डोम मिसाइल रोधी बैटरी और उन्हें संचालित करने के लिए कर्मियों को संयुक्त अरब अमीरात भेजा था। उनके इस बयान से इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों पर प्रकाश पड़ता है। दोनों ही देश लंबे समय से ईरान को संदेह की नजर से देखते रहे हैं और संघर्ष में नाजुक युद्ध विराम अभी भी कायम है। नेपाल के लुम्बिनी प्रांत के अर्घाखांची जिले में आज एक यात्री बस दुर्घटना में 4 महिलाओं और एक पुरुष की मौत हो गई, जबकि 20 अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार लगभग 30 यात्रियों को ले जा रही बस सुपा देवराली मंदिर की तीर्थ यात्रा के बाद पर्वत जिले लौट रही थी, तभी पाणिनी ग्रामीण नगरपालिका 8 के दुर्गाफांत कुडेले में वे सड़क से उतरकर लगभग 100 मीटर नीचे गिर गई। बांग्लादेश में खसरे का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में 9 और मौतें हुई हैं। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार खसरे के पुष्ट मामलों और खसरे से संबंधित लक्षणों से मरने वालों की कुल संख्या अब बढ़कर 424 हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में हुई मौतों में से 3 खसरे के पुष्ट मामले थे, जबकि 6 बच्चों की मौत खसरे जैसे लक्षणों के साथ हुई। हंता वायरस के प्रकोप से ग्रस्त जहाज से निकाले गए स्पेन के एक यात्री की इससे संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। स्पेन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि हंता वायरस से संक्रमित पाए गए यात्री को मैड्रिड के एक अन्य सैन्य अस्पताल में क्वारंटाइन में रखा गया है। विदेश मंत्रालय ने आज कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण जल्द ही समाप्त होने वाला है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इच्छुक उम्मीदवारों को 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया के पुत्र इरवियन सहा और बगास मौलाना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जबकि हरिहरन अमसा करुणन और एमआर अर्जुन की जोड़ी तथा महिला डबल्स में ऋतुपर्णा और श्वेतापर्णा पांडा को हार का सामना करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी गुरुवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने स्थानीय चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफे की मांग को खारिज किया। कहा 20% सांसदों का आवश्यक बहुमत हासिल नहीं हुआ। इसराइल की संसद नेसेट ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमले के आरोपी फिलिस्तीनी आतंकवादियों पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष सैन्य न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला कानून पारित किया। नेपाल के लुम्बिनी प्रांत में एक यात्री बस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत और 20 घायल। और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम साईरा मुज्तबा विद वर्ल्ड न्यूज। The headlines. India to host 2-day BRICS foreign ministers meeting beginning Thursday to exchange views on global and regional issues of mutual interest. British Prime Minister Keir Starmer rejects resignation calls after local election setback, says required threshold of 20% MP not met. Israel's Knesset passes law creating military tribunal to prosecute October 7 attackers.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026

0: परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवीके सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। उसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया की जोड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from the Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation into the matter. NEET UG 2026 exam was conducted by the National Testing Agency or NTA on the 3rd of this month. In this case, the Rajasthan Police Special Operations Group, SOG, has so far detained 15 people. The SOG yesterday detained an alleged mastermind identified as Manish from Jaipur. Addressing a press conference on NEET exam cancellation in New Delhi, DG National Testing Agency, Abhishek Singh, said, NTA will conduct a re-exam for students and it will be done in a fair manner and no additional fee will be charged for the re-exam. The political situation in Tamil Nadu has turned dramatic ahead of tomorrow's floor test for the newly elected TVK government.